0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
2: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: 6:41 on the clock on this Friday ki subah, and traffic is usually quite well behaved on a Friday morning. Aaj bhi aisa hi kuch haal hai. E11 311 par aapko usual डिले मिलने वाला है 4 से 5 मिनट का हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड दुबई फ्रॉम शारजा. अनयूजुअल ट्रैफिक आज 66 पर सो अर्ली इन द मॉर्निंग जदाफ एरिया में आपको मिलेगा. एक इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड आउट देयर सो बी केयरफुल. आज सुबह यस देयर इज अ यू नो एन इंसिडेंट ऑन शेख जायद रोड एंड दिस इज राइट आउटसाइड मॉल ऑफ द अमृत्स. देयर इज एन एक्सीडेंट आउट देयर सो स्लो मूविंग ट्रैफिक यू विल फाइंड सो बी केयरफुल. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: कुछ घंटों पहले 13 आवर्स अगो टू बी प्रिसाइज समथिंग केम आउट. इट्स अ टीजर ऑफ अ मूवी दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन. सुनिए, खुद पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ.
1: काबिल औलाद बहुत मुश्किल से मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती.
2: आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने गैंगस्टर लोग एम्बिशियस रहे हैं सब साले टॉप पे पहुंचे हैं. नीचे से उठकर ऊपर गए.
3: वो सब ऊपर नहीं गए, ऊपर ही चले गए.
0: You guessed it right. It is the Mirzapur the movie ka official teaser and it's going to be out on the 26th of September. Is this like the Dhurandhar of OTTs? I think so.
4: Ladies
0: I think so.
4: Gentlemen,
0: speaking of Dhurandhar, here's the title track. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: 611 पे traffic जमाना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि things might go a bit south traffic wise, but yeah, heading south going towards Alavir on 611, you'll find 2-3 minute की देर. 311 E11 पर तो as expected you'll find 5 to 6 minutes का delay heading south going towards Dubai from Sharjah, and D62 Beirut Street पर भी आपको हल्का बुल्का traffic मिलने वाला है. चलते हैं देरा की ओर. दिस वाटरफ्रंट मार्केट का ट्रैफिक आज सुबह वंस अगेन हेडिंग साउथ एंड देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन 66 दुबई अलेन रोड पे एस यू क्रॉस जदाफ एंड देन 44 अलखेल रोड पर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे फ्रॉम D3.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: from Welcome to the Jungle. The film that releases today, that is Uncha Lamba Kad Forever. हो रहा है यार, हो रहा है. साइंस फिक्शन जो जॉनर है, इट इज टर्निंग इनटू डॉक्यूमेंट्री.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: कुछ साल पहले तक जो चीज हमारे लिए साइंस फिक्शन थी, दैट इज नाउ टर्निंग इनटू प्रॉपर रियलिटी. आज सुबह जो खबर मिली वो ये कि देयर इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट. क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप एक रोबोट खरीदेंगे फॉर $20,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 75,000 दिरहम्स. नाउ बिफोर यू से कि अरे नहीं नहीं भाई बहुत महंगा है, नहीं नहीं मैं जैसा हूं वैसा, लिसन, ये रोबोट कर क्या क्या सकेगा? इट कैन डू योर डिशेस, योर लॉन्ड्री, मतलब बेसिकली आपके झाड़ू कटका बर्तन सब कुछ करके दे फॉर एवर, फॉर लाइफ. अब बताइए, डू द मैथ, $20,000 स्टिल वर्थ इट? प्लस इट कैन इवन आंसर योर क्वेश्चंस, कैरी विच प्रॉब्ली योर डोमेस्टिक हेल्प chooses not to these days. Also, 55 pounds it can carry and runs for 4 hours. Helps with daily chores like watering plants as well. Is it now sounding more like a viable investment? Yeah, I think I'm going to put up a poll question about this on our Insta 106.2 Big FM par jaiye and you'll be able to answer that question. I just have, main soch ke batata hun. But I have one question. Can we call it Bai? Like Sakku Bai, because Bai mein it has an AI. ब्रिलियंट आइडिया यार, ऐसे मुफ्त के अच्छे आइडिया आपको मेरे शो पे ही मिलते हैं. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. हियर्स परदेसिया फ्रॉम परम सुंदरी. नॉट सच अ गुड आइडिया ऑफ अ फिल्म. कमिंग अप वेरी शॉर्टली द बिग बॉलीवुड क्विज. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money मनी यूज करो।
1: क्या सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money मनी के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट,
4: नो, इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
3: रियली?
4: या, एंड विद अ इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
3: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
4: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
0: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
6: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Morning, 8:13 minute on this Friday ki subah 26th of June, 33 degrees Celsius right now, humidity at 52%, winds blowing at 18 kilometers per hour, highs of 36 right now, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: And talking about Mukabla, it's time for the big Bollywood quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: आज जब फ्राइडे है, ज्यादा मेहनत करने के मूड में हम लोग होते नहीं है. कुछ घंटों के बाद वीकेंड वैसे ही शुरू होने वाला है, सो ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं दूंगा. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. या आई मीन इट्स नॉट अ गिव अवे, बट इट्स एज इजी एज टुडे द 26th of June, वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस बॉलीवुड फैंस, बिकॉज अ वेरी बिलवड बॉलीवुड स्टार सेलिब्रेट्स 34 ईयर्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री टुडे. क्योंकि 26th of June 34 ईयर्स अगो वी सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सिल्वर स्क्रीन in a cinema, first time bade parde par, that's a clue for you. And the first time we saw him, he was doing this. Agar aapne is music se pehchan liya bhai, matlab hats off to you. Koi na koi chahiye. कौन से बॉलीवुड स्टार की एंट्री बॉलीवुड में इस गाने से हुई थी? एग्जैक्टली 34 इयर्स अगो. इफ यू नो द करेक्ट आंसर, गिव मी अ कॉल राइट नाउ. 800-1062. क्लू फॉर यू, डजंट गेट एनी सिंपलर देन दिस. दो ओपन मूवी टिकट जीतने का मौका आपके पास इन द बिग बॉलीवुड क्विज. कॉल कीजिए 800-1062.

0: Vivek Oberoi from the film Satya. On top of a bike. ये एक बाइक सॉन्ग, पिछली बार भी मैंने आपको एक बाइक सॉन्ग सुनाया था एंड आस्क्ड यू के कौन से बॉलीवुड एक्टर की एंट्री इस बाइक सॉन्ग में हुई थी 34 इयर्स अगो.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: जहीर भाई मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है. जहीर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग?
2: गुड मॉर्निंग सिड भाई, आई एम वेल, हाउ अबाउट यू?
0: आपकी आवाज से लग रहा है कि बस मतलब वो जो ख्याल है ना कि कुछ घंटे काम पे उसके बाद वीकेंड.
2: बस नमाज को जाओ, नमाज पढ़ के आ जाओ, खाना खा लो, घर पे निकल लो.
0: एग्जैक्टली, मैंने आपको अगर मंडे को बात किया होता तो इतने एनर्जेटिक नहीं साउंड करते ना.
2: नहीं नहीं, मंडे तो एकदम पूरे बोरिंग होता है.
0: सही
2: है, वीकेंड है.
0: तो चलो एक बार फिर से गाना आपको सुनाता हूँ मैं. लास्ट टाइम जो मैंने बाइक सॉन्ग सुनाया था, देयर इज अ 34th एनिवर्सरी टुडे.

0: एग्जैक्टली डॉट ऑन द डे 26th ऑफ जून 34 इयर्स अगो कौन से बॉलीवुड स्टार का एंट्री हुआ बड़े पर्दे पर पहली बार उनको देखा इन दिस सॉन्ग टेल मी द करेक्ट आंसर
1: शाहरुख खान
0: इज द करेक्ट आंसर अच्छा जहीर भाई जिस बाइक के ऊपर ये बैठे थे उसका मॉडल याद है क्या आपको
1: अरे नहीं 34
0: इयर्स पूरा ना अरे इतना अरे फ्राइडे सिड भाई क्या कर रहे हो अच्छा चलो मैं थोड़ी सी आपकी टेंशन बढ़ाता हूँ आपको मुझे बताना है इससे पहले कि मैं पासेस आपको दे दूँ आपको बनना है जबरदस्ती का शाहरुख ठीक है मुझे बताओ मुझे बताओ कि जहीर और शाहरुख खान में क्या सिमिलैरिटी वन बिग सिमिलैरिटी बिटवीन जहीर एंड शाहरुख अरे भाई वो अलग या तो गला साफ कर रहे हो
1: नहीं शाहरुख खान और मैं हम दोनों बम्बई से ही है
0: हाँ।
1: और दूसरी जो कॉमन बात है वो कॉन्फिडेंस भाई उस बंदे में जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वाह कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल है उसी तरह थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाँ थोड़ा थोड़ा है ज्यादा नहीं है जो हिसाब से वो अप लेवल तक पहुंच गया उतना तो नहीं है लेकिन इट्स अ गुड कॉन्फिडेंस आई हैव इट
0: आर यू इनटू सेल्स आप काम क्या करते हो अगर किसी ने सामने से बोल दिया ना जहीर भाई कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जब कोई इंतजार नहीं करता सामने वाले के बोलने का खुद ही बोल दिया अपने मुंह मियां मिट्टू तो समझ जाओ कि वो है एक सेलू जहीर भाई कांग्रेचुलेशन यार मजा आ गया आपसे बात करके एंड आप भी अब मजे करो सिनेमा हॉल में दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए शाहरुख खान डोंट फॉरगेट 34th एनिवर्सरी 34 इयर्स अगो दीवाना रिलीज हुई एंड पहली बार हमने शाहरुख खान को या बिग स्क्रीन पे देखा बिग स्क्रीन वी ऑलरेडी सॉ हिम ऑन द स्मॉल स्क्रीन फौजी सर्कस रिमेंबर बट देन बिग स्क्रीन एंड आते ही उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के हाँ छक्के छुड़ा दिए इन दिस फिल्म ऋषि कपूर या कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल द बिग समर सरप्राइज डोंट फॉरगेट रोज सुबह मौका आपके पास टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ बॉलीवुड मसल विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज यस काका भणियावाला विद गोरिये ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड गुड मॉर्निंग

0: Ashuka from Cocktail 2. Agar aapko bhi is summer you want to chill out like the star cast of Cocktail 2, Shahid, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna, then you got to take part of the big summer surprises.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Already बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप्स आ रहे हैं. द नंबर नोट डाउन इज 0543091062. दैट इज द नंबर यू गॉट व्हाट्सएप. BSS स्पेस देकर अपना नाम एंड सेंड इट एज अ व्हाट्सएप मैसेज. वी गोना प्ले वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट. हियर्स हाउ द कॉन्टेस्ट वर्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको दूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 30 सेकंड्स. टू पीपल ऑन द फोन लाइन विद मी इन कॉन्फ्रेंस प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. जितने ज्यादा वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स किए उसके नाम चले जाएंगे, उसका नाम नहीं एक ही नाम जाएगा ड्रॉ के अंदर. एंड देन दे हैव अ चांस टू विन दिस wonderful, wonderful staycation at the fabulous Rixos Almirid in Ras Al Khaimah. Plus, on the spot, two Vox tickets and an F&B voucher as well. So, it is all up for grabs. Friday hai. This your weekend can start on just the perfect note if you win so much right here on the Big Summer Surprises. All you got to do is just type out BSS for Big Summer Surprises. BSS, space your name. Keep WhatsApping. The number is 054-309-1062.

0: नीरज श्रीधर उर्फ बॉम्बे वाइकिंग्स, लव मेरा हिट हिट, तुम मत कर खिटपिट, थोड़ी खिटपिट तो होगी यार, थोड़ी सी हिच हिच, बिकॉज वी आर प्लेइंग बिग समर सरप्राइज, चांस फॉर यू टू विन अ स्टेकेशन.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: All right, the two contestants ready with me on the phone line. Let's say good morning. Sabse pehle, ladies first. Geeti, how are you doing?
2: Hi, I'm good. How are you?
0: Very, very good. Yaar. Kya chal raha hai? How's the Friday morning been so far?
2: I just entered my office and received your call.
0: अच्छा, क्या काम करते हो आप?
2: I'm in marketing, real estate.
0: Marketing, real estate.
2: Yes.
0: Okay, okay. देखते हैं कि आप कितनी ऊंची इमारत आज खड़ी कर पाती हैं इस contest में. And और I've got on the other line भरत.
3: Yes, sir.
0: भरत ने जब मैंने कहा कि भरत ने मुझसे पूछा पहला सवाल गीति के, अरे भाई ये क्या लाइव होगा क्या? मैंने कहा हाँ. ओ भरत, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अरे टेंशन मत लो. कहते फिर भरत ने बताया क्या कहा, भरत ने, भरत एंड आई एम श्योर भरत यू आर फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि भरत ने कहा आड़ दो. कोई बात नहीं, आड़ दो. या भरत, कहाँ से हो आप?
3: मैं हरियाणा से
0: हूँ. हरियाणा, मैंने, मेरे को लगा ही था NCR टाइप का एक फील आ रहा था आपसे बात करके. बट लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. गोइंग टू बी भरत वर्सेस गीति. आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकंड्स. ओके, द क्लॉक विल बी टिकिंग एंड इस 30 सेकंड्स में जितने भी हो सकते हैं मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स दूंगा. नाउ व्हाट्स कॉमन बिटवीन दीज वर्ड्स इज के इन सब वर्ड्स का कोई ना कोई नाता, कोई कनेक्शन है विद अ वेकेशन, बिकॉज यू स्टैंड टू विन अ स्टेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड. सो इट कुड बी लाइक अ डेस्टिनेशन का नाम, इट कुड बी अ कंट्री सिटी का नाम, इट कुड बी समथिंग दैट यू पैक इनसाइड अ सूटकेस. सूटकेस कुड बी वन ऑफ द वर्ड्स, है ना. सो अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है तो आपको जवाब नहीं चिल्लाना है, आपको चिल्लाना है बिग फॉलोड बाय योर नेम. ओके, सो गीति इफ यू थिंक यू नो द आंसर, आपको क्या चिल्लाना है?
2: बिग गीती.
0: एंड भरत, आपको क्या चिल्लाना है?
3: बिग भरत.
0: बिग भरत. ऑलराइट, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस?
2: नो, नथिंग.
0: भरत, ऑल सेट?
3: ऑल सेट सर.
0: आपका समय शुरू कर दूं मैं?
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल.
0: योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फर्स्ट वर्ड इज TW-L. TW-L.
2: बिग गीती.
0: टावल इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल है DU-I. DU-I. DU-I. जल्दी करो. भरत, कॉमन, हम सबके बीच में कॉमन, इट इज क्लोजर टू होम देन यू थिंक. DU-I. अरे कहाँ रहते हो आप लोग?
2: दुबई.
0: क्या कर रहे हो यार भरत? यार आराम से, डोंट किक द एक्सेलरेटर वरना भी हो सकता है. बट यार भरत, वेरी वेल प्लेड, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट भरत. बट आई थिंक गीति, कांग्रेचुलेशंस, आपका नाम चला गया ड्रॉ के अंदर.
2: थैंक यू सो मच.
0: ऑलराइट भरत, हैव अ फैबुलस फैबुलस वीकेंड. यू कैन कीप ट्राइंग, कीप व्हाट्सएपिंग ऑन 0543091062. बट गीति, आपने ना सिर्फ अपना नाम ड्रॉ के अंदर डलवा दिया है टू विन एन अमेजिंग अनफॉरगेटेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड इन रस अल खैमा, यू हैव ऑल्सो वन ऑन द स्पॉट 2 वॉक्स टिकट्स एंड एन F&B वाउचर. कांग्रेचुलेशंस. क्या बात है, मैं ना कहता था कि ये रियल एस्टेट वालों की बात ही कुछ और होती
2: है. एंड स्पेशली मार्केटिंग, यू नो.
0: ओह माय गॉड यार, ओ हो हो हो. सो बताइए कैसा रहा आपका महीना सो फार? आई मीन, हैव यू मेट ऑल योर टारगेट्स और व्हाट इज दिस थिंग लाइक? आई मीन
2: इट्स गुड, गोइंग गुड फॉर नाउ.
0: चलो बढ़िया. डू आर यू बैडली इन नीड ऑफ अ स्टेकेशन? बहुत मेहनत करी आपने इस महीने या कैसा है?
2: Yeah, I have been on trips last month also, but yeah, I would love to go for any vacation.
0: कौन सी कंपनी है भाई ये? इतनी लीव कैसे अप्रूव हो रही है? अच्छा मत बताओ मत बताओ, ठीक है, बट चलो ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, कीप योर फिंगर्स क्रॉस, यू हैवंट वन दिस स्टेकेशन येट, बट ड्रॉ में जब ड्रॉ होगा उसमें से आपका नाम निकल सकता है एंड यू कुड बी हेडिंग आउट फॉर दिस वंडरफुल वेकेशन. बट जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दो मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर तो आपका हो ही गया. थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू सो मच,
0: टेक केयर. दैट इज गीति, हमारी आज की विनर हैं एंड ड्रॉ एंट्रेंट हैं. आप भी मैसेज करते रहो रोज सुबह मौका ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी, सिर्फ यू आर प्लेइंग द बिग समर सरप्राइजेस. द नंबर इज 0543091062. दैट्स द नंबर, की व्हाट्सएपिंग BSS इज योर नेम. बिग समर सरप्राइज बीन मेड पॉसिबल बाय आर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमायरे रसल खेमा. ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि कल नहीं अब मंडे सुबह एक बार फिर आई एम गोना बी प्लेइंग दिस गेम एट द सेम टाइम. एक और लिसनर, वन ऑफ यू इज गोना गेट शॉर्टलिस्टेड इन द लकी ड्रॉ एंड ऑल्सो विन मूवी टिकट्स एंड एन F&B वाउचर. Big 106.2.

0: Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Today's weather update, sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट.
7: मॉर्निंग, नमस्कार. 19 मिनट ऑन दिस फ्राइडे की सुबह 26th ऑफ जून. 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ह्यूमिडिटी एट 52%. विंड्स एट 18 किलोमीटर पर आवर. हाइज ऑफ 36 राइट नाउ. लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Are ho samba. तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
7: Mugambo, खुश हुआ।
1: फिलहाल हम खेलेंगे 5-second rule. आपको मिलेंगे 5 second. मैं आपको कुछ categories दूंगी. यहाँ पे जो है अपना वो serious, mysterious side जो है side पे रखना. फटाफट खेलने वाला game है, ठीक है? तीन चीजें जो green color की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं.
8: Apple, pear,
1: okay,
8: और मटर.
1: Not bad. Quickly tell me तीन ऐसी compliments जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
8: I like you.
1: अरे तुम्हारा time finisher.
8: Your eyes are beautiful.
1: Time finisher होने दिया ये, मैं कह रही हूँ ये लड़का player है, ये लड़का player है. एक second नहीं लगा है. तीन ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो. देखा, अब नहीं बताएगा. ये पोल नहीं खुलने वाले हैं. ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: Let's start with E66. Unusual traffic aaj Al-Jadaf cross karne ke baad going towards E11. Yahan par 4 se 5 minute ki der. Aisa hi kuch hal E44 Al-Khail Road par going towards the usual business way from D3 and then 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Roz ki tarah yahan par 7 se 8 minute ki der. Beirut Street ka traffic is picking up heading south after Medina Mall. And on 611 Emirates Road you'll find 3 se 4 minute ki der going towards Al-Aweer heading south.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

एक्सप्लेन, बिकॉज चाहे आप बड़े बॉलीवुड फैन हो, चाहे आप बड़े क्रिकेट फैन हो, फुटबॉल फैन हो, देयर इज समथिंग अमेजिंग दैट इज हैपनिंग इन ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स. लेट्स स्टार्ट विद फुटबॉल. आज शाम को टू ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स सो फार एट द वर्ल्ड कप आर गोना बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. फ्रांस वर्सेज नॉर्वे का गेम, एंड दैट टू नॉट एट एन अनअर्थली आवर. ये 11 बजे रात को है. सो मेक योर प्लान्स राइट नाउ. इफ आई वाज अ बिग फुटबॉल फैन. एंड देन लेट्स गो टू बॉलीवुड. पता नहीं कितने साल से हम लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. एवर सिंस इट्स बीन अनाउंस दैट इतनी बड़ी, मतलब थोक के भाव में स्टार कास्ट है इसके अंदर. सम व्हाट 34 और 36 बॉलीवुड एक्टर्स स्टार्स आर गोना बी इन दिस फिल्म. वेलकम टू द जंगल इज कमिंग आउट टुडे. आज रिलीज हो गई है अक्षय कुमार की ये हिलेरियस कॉमेडी जो प्रॉमिस कर रही है, डायरेक्टेड बाय अहमद खान. एंड देन लेट्स मूव फाइनली टू क्रिकेट. दिस इज द बिग वन अकॉर्डिंग टू मी. आज दोपहर 4:30 बजे इंडिया वर्सेज आयरलैंड का T20 गेम होने वाला है. अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज आई नॉट मेक सच अ बिग ह्यून क्राई अबाउट दिस, लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इज दैट अ सर्टन मिस्टर वैभव सूर्यवंशी, एक्चुअली कैन वी से मिस्टर और शुड वी से मास्टर, ये कन्फ्यूजन है. मास्टर ही बोलना पड़ेगा, मास्टर वैभव सूर्यवंशी, हु इज सो यंग, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, एंड दैट इज वाई कांट इवन शेयर द सेम ड्रेसिंग रूम एज द अदर सीनियर प्लेयर्स. बाय द वे उसका अलग ही अरेंजमेंट करना पड़ा, बिकॉज दैट्स द रूल. आई मीन अगर आप 16 साल से ज्यादा के नहीं हो तो आपका ड्रेसिंग रूम भी अलग है. ही इज अलाउड टू गेट हिज पेरेंट्स, एंड दैट सर्टन मास्टर वैभव सूर्यवंशी माइट बी मेकिंग हिज डेब्यू फॉर इंडिया अगेंस्ट आयरलैंड आज दोपहर 4:30 बजे. सो दैट मेक्स इट अ डिलिशियस प्रॉस्पेक्ट, whether you are a cricket fan or you are not. Yeah, so 4:30 baje India versus Ireland ka pehla T20, and of course don't forget it's going to be the first time that Shreyas Iyer will be captaining the Indian team. I think we'll put up a poll about this on our socials, on our Insta. Don't forget to follow us 106.2 Big FM. Ke Vaibhav Suryavanshi ko pehla hi game khilana chahiye aapke hisab se, or should the selectors and Mr. Iyer be more conservative and make him watch the pehla game? Should he play today directly, throw him in the deep end, or do you think he should be kept back and watch the first game and play the next one? That's going to be our poll question on 106.2 Big FM. That's our Insta handle. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: yeah, baby.
1: नहीं ये बेबी तो बिल्कुल नहीं है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इन्होंने कहा होगा नो बेबी प्लीज नो.
2: The Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: यार क्यों करते हो ऐसे काम, मतलब आपको पता होता है कि you know, ये सब करने का क्या नतीजा होगा, फिर भी आप करते हो. This is just not cool, you know. Okay, so ऐसे कभी हुआ आपके साथ that you know been alone? Maybe it's a weekend, maybe it's not, and you just not in the mood to be alone. And अभी आपको bore हो रहा है, आप अकेले, you know, आपको आदत नहीं अकेले रहने की. You're so used to being with people that when you're alone, you just go a little crazy and you do the craziest things. Because this woman did exactly that. So basically, Arizona में this lady, she ordered for pizza. ठीक है, अकेले घर में बैठी हुई थी, उन्हें movie देखनी थी. She ordered for pizza. The perfect weekend, you know. मेरे लिए this is the ideal weekend. I want to be by myself, order tons and tons of pizza for myself and watch some of the best movies that I've been waiting to watch. Hai na, binge karo akele baith ke. But shayad inko wo nahi jama, to inhone order kiya pizza. So this delivery driver came, you know, with the pizza that she'd ordered, and unko to laga mere liye normal apni duty hai bhai, aao deliver karo apna pizza visa, apna tip lo, paisa lo, jo bhi hai, nikal lo. And she opened the door, accepted the pizza and said ki bhai paise waise jo bhi lena andar aa jao main tumhe de deti hu sara kuch paisa waisa. She gave him the money and all of that, and then she said why don't you join me for a movie, and he's like are mujhe to nahi dekhni main chala jata hu, but she insisted ki movie dekho. Insist karte karte karte wo you know dhamki pe aa gaya ki tu baith aur mere sath movie dekh, I don't care but I don't want to be alone, so you're going to sit and watch this movie with me. Unhone force kiya कि वो बैठे और बस उनके साथ मूवी नाइट करें, बस दैट इज इट. मूवी नाइट करने के लिए उनको फोर्स किया गया. नाउ द डिलीवरी ड्राइवर, कम ऑन यार, उनका हक है टू से नो, भाई मुझे नहीं देखनी आपके साथ मूवी, मुझे डर लग रहा है, यू गिविंग क्रीपी स्टॉकर वाइब्स, लेट मी गो. सो द वुमन इंसिस्टेड, ऐसे मतलब एकदम ट्रॉमेटाइज करके उनको बिठा दिया. एंड देन सम ऑफ द नेबर्स हर्ड, थोड़ी सी चिल्लम चिल्ली एंड कॉल्ड इन द पुलिस. द पुलिस केम, अरेस्टेड द वुमन. बेचारा जो ड्राइवर थे, मतलब उनको कोई हार्म नहीं था, फिजिकल हार्म तो बिल्कुल भी नहीं, बट ही वॉज एब्सोल्युटली शुक. Like the police said, he was just sitting in one corner, एकदम traumatized कि ये क्या ही हो गया मेरे साथ. धक्के से picture देखने को मतलब मुझे कहा है. And I can only imagine what this would have, you know, left him with, what kind of an impact this would have had on him. मतलब आगे जाके future में अगर उनकी girlfriend उनको बोलती है चलो ना बीबी आज picture देखने, नहीं picture नहीं देखनी है, कुछ भी कर लेंगे लेकिन picture बिल्कुल नहीं देखेंगे.
3: ए बुड्ढे,
4: नमस्ते.
3: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे.
4: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए.
3: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा.
4: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं, मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं.
3: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है गुस्सा, आ जाएगा गुस्सा, आ रहा है देखिए.
4: ये गुस्सा नहीं है.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: It's game on with Big Ticket.
6: A guaranteed 25 million dirham prize.
5: 5 winners of 1 million dirhams each.
6: Plus weekly draws.
5: Buy now at bigticket.ie.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
2: Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
1: 35 डिग्री सेल्सियस बाहर एज ऑफ नाउ, थोड़ा कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर है. ह्यूमिडिटी फिलहाल है 46% पे. हाईज आज जाएंगे 36 तक, लोज जाएंगे 31 तक. इट्स लाइक द वेदर इज ट्राइंग टू हेल्प अस गेट थ्रू द वीकेंड.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
10: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
3: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: कोई ट्रैफिक नहीं है यार, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट फ्राइडे, अबाउट द वीकेंड। ट्रैफिक इज वेरी वेरी इजी गोइंग राइट नाउ, बहुत ही हल्का पुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे। फिलहाल थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाएगा, दिस इज इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स S12 शारजा रिंग रोड। उसके अलावा एवरीथिंग लुक्स प्रीटी मच क्लियर वहां पे। एटलीस्ट थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा E11 शेख राशिद रोड पे, दिस इज फ्रॉम अल गरूद हेडिंग टूवर्ड्स फेस्टिवल सिटी, वहां पे आपको मिल सकता है 8-10 मिनट का डिले। ऑल्सो E11 इतिहाद स्ट्रीट, वहां पे एक कार एक्सीडेंट हुआ है, दिस इज अराउंड तवार 1 गोइंग टुवर्ड्स नादा 1, वहां पे बिकॉज ऑफ द कार एक्सीडेंट एक 12 मिनट का डिले मिल सकता है। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट्स यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month। big 106.2।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: अल रास है ना?
1: अल रास बोले तो?
0: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अल रास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: Listen to her every day.
3: Mugambo, खुश हुआ।
4: फिलहाल हम खेलेंगे 5-second rule. आपको मिलेंगे 5 second. मैं आपको कुछ categories दूंगी. यहाँ पे जो है अपना वो serious, mysterious side जो है side पे रखना. फटाफट खेलने वाला game है, ठीक है? तीन चीजें जो green color की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं.
5: Apple,
4: pear, okay.
5: और मटर.
4: Not bad. Quickly tell me, तीन ऐसी compliments जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
5: I like you.
4: अरे तुम्हारा
5: time
4: नहीं
5: शुरू. Your eyes are beautiful.
4: Time नहीं शुरू होने दिया. ये मैं कह रही हूँ, ये लड़का player है, ये लड़का player है. एक second नहीं लगाए. तीन ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो. देखा, अब नहीं बताएगा. ये पोल नहीं खुलने वाले हैं. ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
2: ये है जोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली
9: है. कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: 36 degrees Celsius bahar, humidity filhal hai 45% pe. Hopefully not getting higher today and lows will drop down to about 31 later this evening. As of now, ekdam bright, ekdam sunny.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: दिल चोरी साडा हो गया की करिए हंसराज हंस का ये गाना राइट हियर ऑन द बिग मिक्स। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको।
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ये जो चेंजेस आए हैं ना उससे आपको दिल चोरी वोरी होने का मतलब आप भूल जाओगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज आई है ये ज्यादा जरूरी है। ओवर द लास्ट वन वीक मेनी मेनी मेजर चेंजेस जो अनाउंस किए गए हैं, सम ऑफ देम वेरी वेरी बेनिफिशियल जिससे हम बड़े खुश हो जाएंगे, सम ऑफ देम जिससे औकात याद आ जाती है। ओके लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट ऑल हैज हैपेंड दिस वीक। अ क्विक रीकैप, पेट्रोल प्राइसेस जो है दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज बिकॉज इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज ऐसे लगने लगा था बस गाड़ी बेचने के दिन आ गए हैं। बट गुड न्यूज फॉर मोटरिस्ट बिकॉज फ्यूल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप इन जुलाई आफ्टर सेवन मंथ्स ऑफ यू नो जस्ट इंक्रीजेस। द ऑफिशियल जुलाई रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो बहुत जल्द हमें रेट्स पता चल जाएंगी। अनदर गुड न्यूज इज द एतिहाद रेल, द यूएई'ज लॉन्ग अवेटेड एतिहाद रेल पैसेंजर सर्विस ऑफिशियली बिगिंस इट्स फर्स्ट फेज ऑन द 30th ऑफ जून। दिस इज गोइंग टू बी कनेक्टिंग अबू धाबी एंड फुजैरा इन जस्ट 1 hour 45 minutes एंड टिकट्स जो है उसको सेल पे डाल दिया गया है ऑलरेडी। इंट्रोडक्टरी फेयर्स स्टार्टिंग एट जस्ट 55 दिरहम अ पर्सन। पार्किंग फीस देखो, जहां मतलब पेट्रोल प्राइसेस को लेके आपका दिल खुश कर दिया वहां ही पार्किंग एक्सटेंड करके आपको सैड कर दिया। फ्रॉम जुलाई 1 शारजा में पेड पार्किंग आवर्स विल बी एक्सटेंडेड अंटिल मिडनाइट व्हिच इज 8 AM टू 12 PM अक्रॉस द एमिरेट। दीज आर द न्यू वर्किंग आवर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, ये आपको नहीं मतलब इसका कोई लेना देना है। दिस इज देयर इनिशिएटिव आवर फ्लेक्सिबल समर, इट्स अलाउिंग एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स and in many cases a 4-day work week during the summer months. You know how people ask ki you know beta aapko kya banna and all that, main yahi kahungi ki hey bhagwan agle janam mohe government employee ki jo

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz?
1: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा.
0: ये सुनो.
2: कोई ना कोई ना कोई जाए प्यार का
3: Exactly, dot on the day, 26th of June, 34 years ago, कौन से बॉलीवुड स्टार का एंट्री हुआ बड़े पर्दे पर पहली बार उनको देखा इन दिस सॉन्ग. टेल मी द करेक्ट आंसर.
4: शाहरुख खान
3: इज द करेक्ट आंसर.
4: ये
3: अच्छा जहीर भाई, जिस बाइक के ऊपर ये बैठे थे उसका मॉडल याद है क्या आपको?
4: अरे नहीं,
3: इतना भी टेंशन आ रही है? अच्छा चलो मैं थोड़ी सी आपकी टेंशन बढ़ाता हूँ. हाँ, आपको मुझे बताना है इससे पहले कि मैं पासेस आपको दे दूँ, आपको बनना है जबरदस्ती का शाहरुख, ठीक है? मुझे बताओ मुझे बताओ कि जहीर और शाहरुख खान में क्या सिमिलैरिटी, वन बिग सिमिलैरिटी बिटवीन जहीर एंड शाहरुख. अरे भाई वो अलग था, या तो गला साफ कर रहे हो.
4: नहीं, शाहरुख खान और मैं, हम दोनों बम्बई से ही है.
3: हाँ.
4: और दूसरी जो कॉमन बात है वो कॉन्फिडेंस. भाई उस बंदे में जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वाह, कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल है.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल प्रीटी इजी गोइंग. थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा E311 शेख मोहन बिन जायद रोड, दिस इज क्रॉसिंग S112. वहां पे आपको मिल जाएगा मनीहा रोड की तरफ जाते हुए थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, 8 से 10 मिनट का डिले. हैवी ट्रैफिक ऑन D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है. इनफैक्ट आपको मिल जाएगा कम से कम 10 मिनट का वहां पर डिले. नो एक्सीडेंट इज सच, बट स्लो मूविंग ट्रैफिक है. E11 अगर आप है शेख राशिद रोड पे, हेल्थ केयर सिटी के पास एक माइनर कार एक्सीडेंट D75 एग्जिट के पास, विच इज कॉजिंग अनदर 5 to 6 मिनट का डिले. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें बता सकते हैं 4305 पे.
0: सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिग 106.2 बिग 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

चली चलो वन ठन के तो आज सारे के सारे चलने वाले हैं. वीकेंड जो है इट इज अ फ्राइडे. 12:46 हो चुके हैं. हेडिंग इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो एंड गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू इन द लास्ट आवर. बिकॉज अगर आप जाना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ एक बढ़िया से स्टेशन पे, एकदम बढ़िया से प्रॉपर्टी पे, तो वो अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं बिग 106.2. मोर डिटेल्स टू फॉलो इन द लास्ट आवर. यू विद मी ज़ोरा. गुड आफ्टरनून.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए. GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ।
4: जुबैर, अगर आपका बर्थडे है, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा अब बर्थडे पार्टी में, आपने किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप बिल भरोगे कि आपके सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करें?
5: नहीं यार, ऑब्वियसली मेरे को ही बिल भरना पड़ेगा। नो, ऐसा तो कॉन्सेप्ट अपने इधर तो नहीं चलता है।
4: Yeah, it's a very non-desi concept, but it's become very common.
5: Okay.
4: तो आप ऐसी पार्टी में जाओगे नहीं जाओगे?
5: ना ऐसे पार्टी में तो कहाँ, थोड़ी जाना पड़ेगा, हमको ही बिल पे करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा।
4: आई थिंक देसीज के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इनविटेशन है, क्योंकि फॉर अस इट मींस होस्टिंग पीपल। तो इफ आई एम गोइंग टू योर हाउस, इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी जो आप ऑर्गेनाइज करें, देन आई अज्यूम के यू विल टेक केयर ऑफ इट, एंड मैंने सिर्फ एज अ गेस्ट जाना है।
5: क्या बोलते, अच्छी हॉस्पिटैलिटी में कंसीडर नहीं करा जाएगा।
4: तो मैं जाऊँ इस बर्थडे पार्टी में कि नहीं जाऊँ?
5: नहीं मत जाओ यार, क्यों जाओगे?
4: अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, जिस हिसाब से मेरा माहौल चल रहा है बैंक अकाउंट से, मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM द बिग थ्रिल विद मासी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae।
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, अगर आप E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लेकर जा रहे हैं शारजा की तरफ, D97 क्रॉस करते हुए मुहैसना फोर्थ की तरफ, तो वहां पे आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक। दिस इज एटलीस्ट अबाउट अ 12 मिनट डिले। D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट स्टिल शोइंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, स्पेशली एमिरेट्स स्काई कार्गो की तरफ अगर आप जा रहे हैं E11 राशिद स्ट्रीट के पास, तो वहां पे आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक, वहां पे भी 8 से 10 मिनट का डिले। उसके अलावा एक कार एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है D89 खवनी स्ट्रीट के पास, व्हिच इज कॉजिंग अबाउट अ 5 टू 6 मिनट्स का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2।
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the big mix on big 106.2 the beat of Bollywood। Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now. Pay next year. Zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. T&Cs apply.
1: Big 106.2, the beat of

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जावेद बशीर की आवाज, व्हाट अ सॉन्ग इट इज, भाग मिल्खा भाग से गाना। और जब जावेद बशीर की जो आवाज फटती है ना, वो जो टॉप सुर जो लगता है, उफ, दैट इज वेयर आई लाइक इट द मोस्ट। यू नो, एकदम रॉ, एकदम ऑर्गेनिक अंदाज से कोई आपके सामने है, यू नो, एक गाना रखते हैं, एंड अगर आप इसी को लाइव इन कॉन्सर्ट पे सुनो तो माय गॉड।
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: इट इज इन माय बकेट लिस्ट टू वंस वॉच जावेद बशीर लाइव इन कॉन्सर्ट। आई होप this comes true very soon and I hope this also comes to you very soon. Iske liye bas aapko ek badhiya si Turkish bakery pe jana hai aur aapko mil jayega. What am I talking about today? I thought I'll talk about sweet because you know, it's the weekend time, people would like to indulge. I'm layered and flaky with paper thin skin, chopped nuts and sweet syrup are hidden within. The Greeks and the Turks, they argue over my name, but a bite of my sweetness is always the same. What am I talking about? What is this sweet? Very sweet, very tasty. It is baklava. बहुत टेस्टी होता है। लाइक आई टोल्ड यू, आई जेन्युइनली डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर ऑल द मिडिल ईस्टर्न स्वीट्स आफ्टर अ टाइम, यू नो, व्हेन यू स्टे इन दुबई, व्हेन यू स्टे इन द मिडिल ईस्ट, आपको तब समझ में आता है कि यार ये तो बहुत टेस्टी है। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली कंप्लेन मी कि ये घी जो होता है वो मुंह में आता है, यू नो, व्हेन यू सॉर्ट ऑफ चू ऑन बकलावा, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट द ऑर्गेनिक फ्लेवर्स दैट बर्स्ट इन योर माउथ एंड दैट्स व्हाट मेक्स बकलावा सो यमी, सो टेस्टी, एंड प्लस द इन्फ्यूजन ऑफ नट्स, ओ माय गॉड। But, if given a choice to me ever between baklava and basbousa, I'll always, always, always go for a basbousa. Always. Like, I can polish them up 5-6 at a time. That's what my thing is. I don't know if you've tried basbousa or not, but if you taste it, aapko lagega ki, wow, isme kuch alag hi taste hai. You know, it's got a very eclair-ish, you know, eclairs jaisa khate the, us jaisa thoda sa thoda swad aata hai uska. That's why I think that I like it much. But whatever is your taste, do let me know on 800-1062, or you can go on our socials, 106.2 BGFM. That's exactly what I'm asking there on my poll as well. Right now, Fast Track Song of the Hour, brought to you by Self Drive. The track is to Jhoom, again, celebrating life, up the Parveen and Nasibo coming together. This is The Big Life, Ujjwal Khanna ke saath.
1: Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
1: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ ना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: अलका याग्निक के साथ बाबुल सुप्रियो की आवाज। ये कुछ अमीषा पटेल के साथ फिल्म्स आई थी इनकी आफ्ताब की सारी टैंक हो गई थी एट द बॉक्स ऑफिस, बट फिर भी इनका कारवा चलता रहा। यू नो, गुड थिंग इज दैट ही वाज लकी इनफ टू गेट प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस। ही केप्ट गोइंग टिल द टाइम इट जस्ट वेंट शुश एंड क्वाइट एंड आफ्ताब स्टॉप्ड गेटिंग प्रोजेक्ट्स एनीमोर। अभी इनको एक जो प्रोजेक्ट मिला है वेलकम टू द जंगल, होपफुली यू नो ही गॉट सम रोल, सम मीटी रोल टू इट। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू watch this film, let me know how the reviews are, how the film is. It looks like a proper circus hai, and I'm sure ek ke baad kehte hai na situational comedy ka jo element hai wo hoga is film mein. But let me know ki aapko kaisi lagi film. Fast track song of the hour, ye gana bhi aapko acha lagega. Love ke liye sala kuch bhi karega ek film aayi thi, usi ka title track hai. Itne zamane baad main gana sun raha hu. Thanks to Aftab and celebrating his belated birthday on Big 106.2. We are the beat of Bollywood.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 105.2. The beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ।
1: बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
1: Song of the Hour, brought to you by Insurance Market. Up listen, our big 106.2. Big good evening to you. Up soon, Rahe the Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2.
1: लाइफ में छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल जाए तब भी हमें खुशी मिल जाती है, और ये इतना बड़ा सरप्राइज है जो आपको मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट सरप्राइज एनीमोर. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट यस, हमार बिग 106.2 इज गिविंग यू दिस अल्टीमेट स्टेके ऑन बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पेशल टाइटल्स फ्रॉम पापा जॉन्स हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अल मायरिड रसल खेमा. गेट रेडी टू यू नो विन दिस फैमिली स्टेकेशन एट द स्टनिंग रिक्सोस अल मायरिड इन रसल खेमा. परफेक्ट टू रिलैक्स, टू अनवाइंड, टू मेक लॉट ऑफ मेमोरीज, टू क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स, टू डू लॉट ऑफ रील्स. यू कैन चिल बाय द पूल, फीस्ट ऑन सम ग्रेट फूड एंड बीट द हीट इन स्टाइल. प्लस आपको चांस मिलेगा डेली प्राइजेस जीतने का, डेली worth 500 dirhams including movie tickets and F&B vouchers every single day. Now participate karne ke liye all you got to do is tune into the Big Breakfast with Sid in the morning and the Big Thrill with Mansi in the evening, and then of course you have to type apne WhatsApp mein jaake BSS, which is BSS Big Summer Surprises, your name, or WhatsApp kijiye usse 0543091062 pe, which is 0543091062 pe. Big Summer Surprises presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos, Almirid Russell Khema, only Big 106.2.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: Today's weather update, sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo! खुश हुआ
6: जुबैर, अगर आपका बर्थडे है, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा अब बर्थडे पार्टी में, आपने किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप बिल भरोगे कि आपके सारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करें?
7: नहीं यार, ऑब्वियसली मेरे को ही बिल भरना पड़ेगा। नो, ऐसा तो कॉन्सेप्ट अपने इधर तो नहीं चलता है।
6: Yeah, it's a very non-desi concept, but it's become very common.
7: Okay.
6: तो आप ऐसी पार्टी में जाओगे नहीं जाओगे?
7: नहीं, ऐसी पार्टी में तो कहाँ, थोड़ी जाना पड़ेगा, हमको ही बिल पे करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा।
6: आई थिंक देसीज के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इन्विटेशन है, क्योंकि फॉर अस इट मींस होस्टिंग पीपल। तो इफ आई एम गोइंग टू योर हाउस, इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी जो आप ऑर्गेनाइज करें, देन आई अज्यूम के यू विल टेक केयर ऑफ इट एंड मैंने सिर्फ एज अ गेस्ट जाना है।
7: ये बोलते अच्छी हॉस्पिटैलिटी में कंसीडर नहीं करा जाएगा।
6: तो मैं जाऊँ इस बर्थडे पार्टी में कि नहीं जाऊँ?
7: नहीं मत जाओ यार, क्यों जाओगे?
6: हाँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। जिस हिसाब से मेरा माहौल चल रहा है बैंक अकाउंट से, मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी?
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Hello, hi, good evening to you. Big 106.2 pe Ujwal Khanna ke saath aap traffic update 4:25 on the big clock. Agar aap hain Sheikh Mohammed bin Zayed Road pe, traffic about 15 minutes ka delay aapko milega. Baat karun is waqt D89 traffic thoda sa wahan pe bhi congestion hai. Sharjah Industrial Area 15 ke aas paas aapko thoda sa traffic milega. Downtown Dubai Business Bay ke aas aapko traffic milne wala hai. Al Aftur City ke aas paas thoda sa aapko intermittent traffic milega. Baat karun Al Quds Industrial Area 2nd, slow moving traffic there as well, and National Plains ke aas paas hai, and if you're Sharjah bound to wahan pe bhi aapko delay milega. About 15 minutes ka delay is what is being shown to me by the maps. Any other obstruction you can text me in 4305, which is 4305. Mahalakshmi Air ke baad the track is chup chup ke aapke saath until 5.
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से?
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 35 फील्स लाइक 43। आज लो जाएगा अराउंड 31। प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी फिलहाल 62% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi on the phone line. Shaika. Gana tha Sahiba, ab hai Shaika. Hi, Shaika.
2: Yeah, hi. How are you?
1: I am good. बड़ा अच्छा नाम है, इसका मतलब क्या है Shaika? वैसे बड़ा अमीरों वाला नाम है ये. नाम से ना बड़ा फर्क पड़ता है. शायका मतलब शायका जो है वो बिजनेस क्लास में ही जाएगी. शायका जो है वो 7 कोर्स मील ही खाएगी. शायका नहीं जो है वो एवी हमारी इतना बड़ा पाव खा ले, है ना शायका? देखो ऐसे कहते हैं मॉडेस्टी. फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट शायका.
2: ओके, 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: 3 ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में मिलती हैं.
2: टूथपेस्ट, टूथब्रश
1: और
2: लोफा.
1: ओके, फटाफट शायका. ओके, इट्स 5 सेकंड ओनली. 3 रवीना टंडन की मूवीज.
2: मोरे.
1: Wow, मोरा. I've got the मोरे, मोरा था वो. 3 things that you hate doing over the weekends.
2: Weekends. Cleaning.
1: और?
2: Going out.
1: 3 qualities जो बहुत जरूरी है to be Shaika's friend.
2: Honesty.
1: और? Time खत्म. या आप हमेशा से इतना धीरे धीरे बात करते हो स्लोली स्लोली, ये कि आज कुछ स्पेशल है?
2: No, actually I am not well, but my throat is paining, that's why I can't talk fast.
1: Okay, three things that you notice in a guy when you first see him.
2: Looks,
1: good looks,
2: personality, yeah, good looks, yeah.
1: Good looks. Time khatam ho gaya.
2: हाँ.
1: From where he is, कैसे पता चलेगा देखकर?
2: Yeah, that's true.
1: Good looks is valid. तो ये मिल गया आपको good looks वाला बंदा कि ढूंढ रहे हो?
2: मिला है. Committed
1: to. Okay, तो ये कहाँ मिला गुड लुकिंग बंदा? Just asking for a friend. Shaika, hit or miss था, कुछ जवाब आपने दिया. Actually, most of the answers were not on time, but I hope you had fun playing the game.
2: Yeah, yeah, lots.
1: You have a great evening. It was lovely talking to you. Bye.
2: Thank you, ma'am. Thank you.
1: Yeah, yeah. 5 second rule. अगर आपने खेलना है, एक ही rule है. मुझे call करना 800-1-0-6-2 पर.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: तो आ गया है मैसेज MOI से कि प्लीज डिसरिगार्ड द प्रीवियस वार्निंग. आई अंडरस्टैंड, मेरी भी धड़कनें बड़ी थी आप ही के साथ थी. मैं तीन तीन फोन्स पे मुझे मैसेज आया था, बट MOI ने कहा है कि प्लीज डिसरिगार्ड द प्रीवियस वार्निंग. सो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है और ज्यादा घबराना नहीं है. हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और स्टेकेशन की ओर जाते हैं. दिस इज योर चांस टू विन अ फुल्ली एक्सपेंसेस पेड फैमिली स्टेकेशन, एंड दिस इज अ स्टनिंग प्रॉपर्टी बाय द वे. अगर आप स्टेकेशन पे जाना चाहते हैं, यू वांट टू बीट द हीट इन स्टाइल, then एक WhatsApp करना है BSS अपना नाम to 0543091062. A आपका नाम आज शाम draw में जाएगा, and B if you win the vacation word game, you are walking away with open movie tickets and F&B vouchers. So weekend sorted है. So फटाफट get set messaging, मतलब WhatsApp कर दीजिए. While you're at it, we are bringing in the weekend. अगर आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना है 800-1062 पर.

0: ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
1: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी छिन जाती हैं, होता ही है मेरे साथ। गुड इवनिंग बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी, वी ब्रिंगिंग इन द वीकेंड। एंड दो तीन बार मैंने फोन उठाया, कोई बोल नहीं रहा था, तो सामने यू नो दीपांशु हु टेक्स केयर ऑफ आवर सोशल मीडिया, वो बैठा है। मैंने उससे कहा आज का दिन बहुत अच्छा है, लड़के मुझे बैंक कॉल दे रहे हैं सालों बाद। जब फोन कनेक्ट हुआ तो सुप्रिया निकली। हाय सुप्रिया।
2: हाय मानसी।
1: यार मैंने जो ख्याली पुलाव पकाए थे
2: तोड़ दिया, सॉरी।
1: मैं इतनी खुश हो गई थी कि यार देखो अभी भी कुछ जलवे बाकी हैं, ब्लैंक कॉल आ रहे हैं आज के जमाने में। सुप्रिया कहती मैं ही कर रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। बट कोई बात नहीं। सुप्रिया बताइए आप मुझे कि क्या करती हैं आप?
2: मैं स्कूल में काम करती हूँ।
1: आर यू अ टीचर?
2: No, I'm the HR.
1: Oh, you're the HR. यार टीचर्स जो है वो तो छुट्टी लेने पे बोलती हैं पेरेंट्स से साइन करवाओ, जब उन्हें खुद छुट्टी चाहिए होती तो आप किससे साइन करवाती हैं?
2: प्रिंसिपल से।
1: अच्छा इन्हें भी परमिशन लेनी पड़ती है?
2: हाँ तो।
1: अच्छा ये देखो हाँ तो। टीचर्स क्या बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए?
2: Oh my God, कितने, उनको तो कोई भी बहाने, like anything under the sun is a bahana for them.
1: Wow, देखो students if you're listening to us, आपकी teachers are also exactly like you. उनके बहाने काफी हैं। फिलहाल what plans for the weekend?
2: मेरे बेटे का birthday है, so we are planning a nice dinner.
1: It's very very nice. Happy birthday to him. फिलहाल मामा के साथ we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें आपने बतानी हैं 5 second के अंदर. All the best.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly name 3 green vegetables for me.
2: Palak, broccoli, beans.
1: Yeah, HR. वो भी स्कूल में थे तो बताना ही था. 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर M.
2: मनीष मल्होत्रा.
1: ओ नाइस.
2: मुकेश
1: अंबानी जी नहीं है बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बट वो सारे सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं, वो अलग बात है। फटाफट खेलने वाला गेम है। 3 ऐसी चीजें अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में बदल सकती तो रातों रात बदल देती।
2: Oh my God, snoring, being boring,
1: snoring and boring,
2: and then being confused.
1: ये सब तीनों चीजें शादी के पहले पता थी आपको कि स्नोर करते हैं, बोर
2: करते
1: हैं?
2: नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल चीट किया गया है इस मैरिज में।
1: तो कंजूस क्यों है?
2: कंजूस पति है नहीं, doesn't buy me gifts on our anniversary, nothing on birthdays, सिर्फ डे सारा प्यार।
1: ये क्या प्यार है? मुझे ऐसा प्यार पसंद नहीं, मुझे गिफ्ट वाला प्यार पसंद है। अब ऐसा प्यार अपने पास रखो। मूविंग ऑन, 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है।
2: दिल क्या करे
1: और
2: दिल
1: है, ओके
2: दिल और
1: खालस। 5 सेकंड फटाफट। अरे अरे अरे अरे अरे अरे,
2: दिल जाता है, सॉरी।
1: बच्चे सुन रहे होंगे यार।
2: हाँ।
1: Quickly name 3 things that you find only at a beach.
2: Umbrella,
1: nice.
2: Sand, water.
1: Very good. 3 Bollywood celebrities जिनकी शादी सेलिब्रिटी से हुई है।
2: आलिया भट्ट।
1: Nice.
2: रणवीर सिंह
1: और
2: दीपिका पादुकोण।
1: एक दूसरे से ही हुई है, चलो कोई बात नहीं, बट नॉट बैड है सुप्रिया। शुरू थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर जा रही थी बट बाद में पिकअप हो गई। आपने पहली बार के हिसाब से अच्छा खेला है।
2: थैंक यू। बट सुनने में ज्यादा इजी लगता है।
1: आई नो राइट, बट इतना इजी है नहीं। बट आज जो आपने जो है सुनाया हमें कि टीचर्स जो है बच्चों से भी ज्यादा बुरे बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए, ये ज्यादा अच्छा था।
2: आई होप मेरे टीचर्स नहीं सुन रहे हो मुझे।
1: आप HR हो, यू डोंट हैव टू वरी।
2: होता है।
1: हाँ मतलब बस कर देना हायर फायर। चलो यार।
2: ओह माय गॉड।
1: ग्रेट इवनिंग एंड अ ग्रेट वीकेंड। बाय।
2: YouTube, bye-bye.
1: Yeah, 5 second rule. आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Friday ki sham hai. The weekend is right here. To start with, kaam ki baat. Ekdam free staycation aapka intezaar kar rahi hai. Agar jana hai with your entire family, you need to register. And for that, WhatsApp karna zaruri hai for the big summer surprises. 054-309-1062 par. एक रिसर्च है जो मेरे पास आई है जो कहती है बिफोर यू प्लान टू मैरी समवन और बिफोर यू डिसाइड कि ये बंदा या बंदी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा जिगरी है उनके साथ ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अनलेस यू ट्रैवल विद समवन यू डोंट नो कि ये कितने पेशेंट हैं या ये कितने गुस्से वाले हैं इन्हें क्या शौक हैं क्या शौक नहीं है क्या ये फैंसी डिनर्स करते हैं या फिर यू नो देर ओके विद द स्ट्रीट फूड बहुत सारी दोस्तियां जो है बहुत तगड़ी हो जाती हैं व्हेन यू ट्रैवल एंड बहुत सारी दोस्तियां जो है वो टूट जाती हैं आफ्टर दैट ट्रैवल सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल विद द पर्सन ईदर यू आर फ्रेंड्स विद और यू आर इन लव विद बिफोर यू मेक अ सॉलिड डिसीजन एंड मुझे बताइए कि कभी आपका कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है Because you traveled with that person 800-1062 per.

0: 20,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi. कहते हैं साथ ट्रैवल करने से रिश्ते गहरे होते हैं, बट रिश्ते टूटते भी हैं. ट्रैवल से आपको पता चलता है कि क्या ये दोस्त जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर ये रिश्ता जो है it is definitely something that you'll take to another level. लोग कहते हैं कि शादी करने से पहले एक travel internationally करना बहुत ज़रूरी है, so that you know you both are on the same page. मैं तो कहती हूँ दोस्ती में भी if you want to know who your real friends are, friends you can vibe with, you have to travel. I remember traveling with a group of friends and I remember one of the friends was so hell bent on eating Indian khana abroad, जो मिल ही नहीं रहा था. एंड उसके चक्कर में इतने कलेश हुए थे जब तक हम वापस आ रहे थे, आधे लोगों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था. गए थे गर्ल्स ट्रिप, बट उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो भी एक दो दिन के बाद इनएक्टिव हो गया. वो गर्ल्स ट्रिप के बाद वो गर्ल्स एक ग्रुप में भी नहीं रही. तो ये होता है ट्रैवल के साथ. सो इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज वेयर इन यू बॉन्डेड विद समवन ऑन ट्रैवल और आपकी दोस्ती आपका रिश्ता टूट गया, मुझे बताओ 800-1062 पे. व्हाइल यू आर एट इट, इफ you are ready for a serious SUV upgrade, then check out the latest deals from Jator. Drive home a brand new Jator with 0 watt or 0 interest on select models and 1,000,000 kilometer warranty. Best part ye hai, you can buy now and pay next year. Your dream SUV could be yours with EMI starting from just 966 dirhams a month. Head to Jator showrooms in Abu Dhabi, in Dubai, Ajman ya Pira Lane, and take it for a spin today. Jator UAE, part of the Elite Group Holding. TNCs do apply.

0: Radio, the beat of Bollywood.
1: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
2: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
3: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money यूज करो।
2: क्या सैलरी के लिए?
3: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
2: जैसे क्या?
3: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
2: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
3: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो। Terms and conditions apply.
0: The Big Mix. Weekdays 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Missed your morning buzz?
4: Utha le re deva, utha le re baba.
0: Yes or no?
5: Koi na koi chahiye. Pyar karwa.
6: Exactly, dot on the day, 26th of June, 34 years ago, कौन से बॉलीवुड स्टार का एंट्री हुआ बड़े पर्दे पर पहली बार उनको देखा इन दिस सॉन्ग? टेल मी द करेक्ट आंसर।
7: शाहरुख खान।
6: शाहरुख खान इज द करेक्ट आंसर।
7: ये
6: अच्छा जहीर भाई, जिस बाइक बाइक के ऊपर ये बैठे थे उसका मॉडल याद है क्या आपको?
7: अरे नहीं, 34
6: इयर्स पूरा ना। अरे इतना भी टेंशन आ रहा है। अच्छा चलो, मैं थोड़ी सी आपकी टेंशन बढ़ाता हूँ। हाँ, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है, इससे पहले कि मैं पासेस आपको दे दूँ, आपको बनना है जबरदस्ती का शाहरुख, ठीक है? मुझे बताओ, मुझे बताओ कि जहीर और शाहरुख खान में क्या सिमिलैरिटी, वन बिग सिमिलैरिटी बिटवीन जहीर एंड शाहरुख। अरे भाई वो अलग था, या तो गला साफ कर रहे हो
7: ऐसा। नहीं, शाहरुख खान और मैं, हम दोनों मुंबई से ही है।
6: हाँ।
7: और दूसरी जो कॉमन बात है वो कॉन्फिडेंस भाई, उस बंदे में जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वाह कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल है।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, द बिग ब्रेकफास्ट विद सिद, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: It is 34 degrees but feels like 42. आज लो जाएगा अराउंड 31. Pretty humid though, humidity फिलहाल 59% पर।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: Big 106.2.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill, Mansi, and we're talking about this research that says before you get married, you need to travel with that person at least once, because you get to understand that the person in front is patient or not, whether the person likes fancy dinners or is okay with street food, kya banda compromise karta hai, flexible hai ki nahi. Dostiyan bhi bahut sari test hoti hain travel ke time. When you travel with friends, either you bond really really well after the trip ya phir aap ek dusre se baat karna chhod dete hain. Right now I've got Gaurav. Hi, good evening.
2: Hi, good evening. How are you?
1: I'm good. So Gaurav, are you a traveler?
2: Bahut travel karta hu.
1: थ्योरी सही है कि नहीं कि बहुत सारे रिश्ते जो है वो बहुत गहरे हो जाते हैं आफ्टर द ट्रैवल या फिर एकदम टूट जाते हैं?
2: दैट इज लाइक एक्चुअली वेरी ट्रू. इट रियली टेस्ट यू व्हेन यू ट्रैवल. इट टेस्ट योर केपेबिलिटी, लाइक यू नो, योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर
1: पेशेंस. सो कौन कितना एडजस्ट करता है, कितना बैलेंस करता है. आई रिमेम्बर गोइंग ऑन अ गर्ल्स ट्रिप अ फ्यू इयर्स अगो. हम चार लड़कियां गई थी जिनमें से दो आपस में बात नहीं करती हैं. आई थिंक आई वॉज द मोस्ट फ्लेक्सिबल वन देयर, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना पैसा खर्च किया तो कलेश क्यों करना है. बट दो लड़कियां जो है वो उसके बाद एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखती हैं.
2: सो गॉड, दैट इज सो बैड.
1: I know, but this happens, and it was all because of the travel, because one of them wanted to eat desi khana abroad and it was very very hard. The other one said it's okay, hum desi khana jo hai roz hi khate hain, isme itna hellbent hone ki zarurat nahi hai. But wo gussa ho gayi, fir uska mood ban gaya and puri trip kharab ho gayi thi.
2: If you're traveling in a group, bahut sari cheeze jo hai you have to consider. So the more flexible you are, the more better. Halanki in the situation that you're saying, like, you know, there was an argument, but then, you know, the best tip is where everybody just, you know, coordinates and, you know, tries to understand the need of the other person.
1: मैं एक और बात बता दूं, पता है उस ट्रिप में एक बंदी थी हमारी गर्ल्स ट्रिप में, और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि लड़कों के साथ ट्रैवल करना ज्यादा आसान है, अगली बार मैं लड़कियों के साथ नहीं आऊंगी. दो साल हो गए हैं, ग्रुप बंद हो चुका है, तो मतलब मेरा तो किसी से कोई कलेश नहीं हुआ. जिनका हुआ वो आपस में देख रहे होंगे. इट्स ओके, यू मेक फ्रेंड्स, यू ब्रेक फ्रेंड्स, सच इज लाइफ. बट ये रिसर्च सही है, अगर आपने जानना है कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप या बॉन्ड है, ट्रैवल करो, है ना.
2: एब्सोल्युटली, आई एग्री.
1: When was the last time you traveled and कहाँ गए थे आप?
2: The last time I traveled was a family trip.
1: वो भी बड़ी कलेशी होती हैं. Family trips भी कम नहीं हैं. Oh, उसमें भी ड्रामे होते हैं.
2: अगर in-laws आ गए, तो आपके लग जाएंगे. और अगर आप, अगर either you travel, because मेरा ऐसे experience है कि मैं in-laws के साथ भी था, मैं both side, my mother and her mother.
1: Oh.
2: And at the same time, अकेले था. So you know, there is something which always happens during that time.
1: इसके लिए मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहता. चलो, यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच गौरव, बाय.
2: यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki sham hai and of course we're making plans for your family staycation with the big summer surprises. Agar aap bhi jeetna chahte hain, you just need to register BSS, apna naam WhatsApp karna hai 0543091062 par, just like Anish and Shivani. Good evening.
2: Hi, good evening.
1: Wow Anish, you sound very very tired. Kya hua?
3: No.
1: Zyada garmi hogi?
3: Not at all. Please go ahead.
1: So Anish and Shivani are here to compete for A, getting shortlisted at staycation ke liye, and B, to walk away with the open movie tickets and F&B vouchers. Shivani, last time staycation kab ki thi?
2: Staycation to nahi, par India recently gayi thi.
1: हाँ, मतलब बट इंडिया की वेकेशन वेकेशन नहीं होती है, इट्स लाइक अचार, घी, देसी कपड़े, सब कुछ भर के लेकर आना, वो ट्रिप का मकसद वही होता है. व्हाट अबाउट यू अनीश?
3: Last week at Oman, Muscat.
1: Oh, very nice. Then you don't need us, sir. Let her go. Let the lady go. You both have to earn this staycation, okay? It's very, very simple. I am going to give you a few words. It's called the vacation word game. These words are related to destinations, to summers, to holidays. Aapne missing letters pehchanna hai and you have to fill in the word and guess the word. That's it. But answer karne ke liye pehle aap bolenge big Anish ya big Shivani and that's when I'll ask you to answer. Agar rules aapne follow nahi kare to aap disqualify ho jayenge. Are you guys ready?
2: Yes.
1: All the very best.
0: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family vacation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, aapka pehla word hai W-V-. W-V-.
2: Shivani.
1: Shivani.
2: Wave.
1: Bilkul sahi jawab. Matlab ek second ke andar. अनीश जी आप हैं कि
3: yes,
1: बस
3: yes,
1: नहीं
3: yes.
1: शिवानी तुम ही जाओ वेकेशन पे, मैं तो अभी ओमान से आया हूँ. चलो जी दूसरा वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज T-E-.
3: ओ बी गणेश.
1: हाँ जी.
3: टाइड.
1: क्या?
3: सॉरी
1: टाइड.
3: ओ सॉरी सॉरी टी डैश ई डैश
1: टी डैश ई डैश.
2: बिग शिवानी.
1: हाँ जी.
2: सोर्स.
1: क्या टोज? ये कैसे टाइप के वेकेशन पे तुम लोग जाते हो यार, ये कहाँ से हॉलीडे से रिलेटेड है टोज? आई ऑनेस्टली डोंट नो. टी डैश ई डैश, इसके नीचे लोग बैठते हैं जब गर्मी लगती है और
3: टेंट. टेंट
1: टेंट. टी डैश ई डैश. अनिश जी आप
2: ट्री.
1: हाँ ट्री इज द राइट आंसर. अनिश जी आपके फीलिंग्स बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है. जीत तो गई वो, आपको टेंट कहाँ से याद आ गया? टो टेंट. एंड इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस शिवानी, यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड एट द मोमेंट फॉर दिस स्टेकेशन, बट यू वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. दैट्स अ ग्रेट वीकेंड.
2: एंड थैंक यू अनीश.
1: थैंक यू अनीश. यस थैंक यू अनीश. अनीश की स्पेलिंग्स. यू गाइस हैव अ ग्रेट वीकेंड. अनीश यू कैन स्टिल ट्राई. ठीक है, बाय.
3: Thank you. Bye.
2: Thank you. Bye.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही, तेरे बाप का माल है।
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता।
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, Friday ki sham hai, weekend ke nahi, staycation ki plans banaiye, we're giving you that chance. In fact, aapne abhi abhi suna, Shivani shortlist hui hai and she walked away with the open movie tickets and F&B vouchers. You could be next, just keep registering, 054-309-1062, humara WhatsApp number hai, BSS, apna naam likke WhatsApp bhejna hai. The big summer surprises has been made possible by our presenting sponsors, Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almarid in Russell Khema, and do not forget, Monday ko फिर से आई बी प्लेइंग दिस गेम विद यू एट द सेम टाइम एंड यू माइट जस्ट गेट शॉर्टलिस्टेड. तो आप अगर स्टेकेशन जीतना चाहते हैं, मूवी टिकट्स, F&B वाउचर्स, लाइक आई मेंशन्ड, कीप सेंडिंग अस दोज व्हाट्सएप. सो व्हाइल यू आर एट इट, इट्स अ फ्राइडे की शाम, माहौल अलग है, मूड अलग है.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे,

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi. कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी किसके सहारे है, तो वो चैट जीपीटी, मेरा जो एंड्रॉइड फोन पे जेमिनाय है उसके सहारे है. अब क्या हुआ, मेरा इस महीने का ना डीवा बिल बहुत ज्यादा आया है, मतलब कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा आया है. तो मैंने जो है चैट जीपीटी से एज ऑलवेज पूछा कि मेरा बिल इतना क्यों आया है. तो उसने मुझे बोला क्योंकि तुम जो है 8-9 घंटे घर से बाहर रहते हो एंड देन यू स्विच ऑन द एसी, तो वो बहुत ज्यादा यूनिट्स खींचता है. तो अब क्या करो कि तुम अपना एसी ऑन 27-26 पे करके जाओ एंड दिस वे यू विल सेव मनी. एंड आई सेड आई विल स्विच ऑन माय एसी द एंटायर टाइम आई एम आउटसाइड. सो ही सेड या दिस वे वी विल टेस्ट फॉर अ मंथ, अगर ये काम आया तो तुम्हारे पैसे बचेंगे. एंड ट्रस्ट मी, आई एम फॉलोइंग व्हाट चैट जीपीटी सेड. मैं अपना एसी ऑन करके आई हूँ 27 पे ऑटो करके. या तो चैट जीपीटी के भरोसे मेरा बैंक बैलेंस बहुत इधर उधर होने वाला है, या फिर सच्ची में मेरे पास जाएंगे. आई विल कीप यू पोस्टेड, बट आई थिंक मेरा जीवन तो चैट जीपीटी के ही सहारे चल रहा है आजकल.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाली फील्स है, वाली एंजॉयिंग द म्यूजिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं देन दिस इज इट। अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस। ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू स्टार्ट देयर ओन एसएमई, स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज, विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555।

0: रहे बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Mix, weekdays 10 AM to 2 PM, only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Ready, throw!
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: बाहर का तापमान स्टिल 34 लो जाएगा, अराउंड 32. फिलहाल प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 68% पर.
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say bye bye. मैं आपसे मिलूंगी अब मंडे को. But do not forget, we've got our big millennial weekend over the weekend, of course. And you're in for a treat. सारे वो गाने जो हम TV पर स्कूल जाने से पहले देखा करते थे, the songs जिसके cassettes हम record किया करते थे. So yeah, taking you back to early 2000s every single weekend. Also, do not forget to follow us on socials. Yes, 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Have a great, great, great weekend and enjoy yourself. मैं कहती हूँ ना, पांच दिन चक्की पीसिंग एंड पीसिंग के बाद वीकेंड आता है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. डू व्हाट यू वांट टू एंड डू एब्सोल्युटली नथिंग. आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम सारे हफ्ते इतनी मेहनत करते हैं यहाँ से वहाँ, स्केड्यूल्स पे, अलार्म्स पे, तो वीकेंड पे कुछ ना करना इज द बेस्ट प्लान ऑलवेज. बट इफ यू नॉट एज एंटी सोशल एज आई एम, देन एंजॉय योर वीकेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड वी विल कीप यू कंपनी विद द बेस्ट म्यूजिक. गुड नाइट.

तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।